ढूंढ लेने जिस दिन ने मुख्य उसको मुझे होते कुछ करना लोलू ने वन ने कंदाव सी मोने कुछ दक यूसुफ मोम मोने कुछ दक लोला और अन्य थली ने वो शहीद है।